श्रीगणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरन्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु।

0: पिकनिक
1: वन भोज दाकिनी वन जङ्गल ओछो छाम्ने बारी ओरेको नै कोबाजेङ्गे माथि
0: नाङथार नाम्लो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने अनुगमन दिने व्यवस्था
1: गेसो छामेला खोलेर चाउसी पोलिए हैलिदे तरिन गाई गेजो मेकेलाई जो अब नजिरे बनाए गेम याल गेजो मेके नलाए औलेम नायो के नाइए
0: वन जङ्गल छ जुलिसियो घेङ बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सहिले के खेले या
1: वन जङ्गल मेला कि के माइए ने ओला कि नि पाँच जना खरना लार मिली दे बनाई चानो जन ने गेस ये
0: बता सु चिली जु बेला त गिजिन के कोटल ने के सता ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालयले खबर दिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।